0: और मैं पाचू
1: इटीनो और रेडियो पियम चुनके रे वेर क्वारो
0: पियम चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमारा मैं पाचू
0: बिमारा मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बी डू टेरा
1: आ लोका कम पेने इटीनो और रेडियो
3: Y'all know what it is. Lord Synthesis Rock, Universal.

0: और मैं पाचू
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो और रेडियो
2: हनी केम इन एंड कॉट मी रेड हैंडेड ट्रिपिंग विद द गर्ल नेक्स्ट डोर
3: यो दिस इज योर बॉय आफ्रिकन सन रिवनल प्रोपोनल

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: मार मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियम चुनकेरे वेर क्वारो
0: पियम चुनकेरे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: युवान लंग यू बिरो टेला आ लोका कालू पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो और रेडियो